बहुत बेबाकी से उखेरा गया है। इसके अलावा एगल परिवार की अवधारणा और पारिवारिक अलगाव भी प्रमुखता से चित्रित होते हैं। प्रवासी साहित्य हमारे समाज को एक नया दृष्टिकोण और आयाम प्रदान करता है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी में मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक द्वंद का जो अनुभव दिया है, विश्व के विभिन्न देशों में बसे हुए प्रवासी भारतीयों ने हिंदी कथा साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनमें मॉरिशस के अभिमन्यु आनंद, जयजीत और अमेरिका के उमेश अग्निहोत्री, डॉक्टर सुदर्शन प्रियदर्शिनी, इला प्रसाद नरेन, सुधा ओम टींगरा, स्नेह ठाकुर, यूके की उषा राजे सक्सेना, उषा वर्मा और अमीरात के कृष्ण बिहारी जैसे अनेक प्रवासी साहित्यकारों ने अपनी कविता, कहानी और उपन्यासों से हिंदी साहित्य को समृद्ध करते हुए हिंदी भाषा और अपने मूल देश भारतवर्ष के प्रति अभिन्न आस्था और प्रेम व्यक्त किया है। अमेरिका में रहने वाली इला प्रसाद जहां प्रवासी भारतीय होने पर गर्व करती है, वहीं प्रवासी साहित्य शब्द पर आपत्ति दर्ज कराता हुए लिखती है। डॉक्टर सुदर्शन प्रियदर्शिनी, उमेश अग्निहोत्री एवं इला प्रसाद की कहानियां वैश्विक परिवेश और अमेरिका के सामाजिक जीवन पर आधारित है। इला प्रसाद की कहानी दर्द यह बयान करती है कि अमेरिका में दाम्पत्य जीवन का आधार प्रेम न होकर सौहार्दता पर टिका है। पति पत्नी के मध्य विश्वास की जगह एक दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। दर्द कहानी का यह अंश अमेरिका के पारिवारिक जीवन की पोल खोल देता है, जहां पर स्त्री अपनी कमाई को परिवार में न लगाकर जिए और शराब में खर्च कर देती है। सुधार गृह से लौटने के बाद टॉम्स ने कभी चोरी नहीं की, किंतु गरीब और कालों को विश्वसनीय कौन मानता है। एंजला ने तब भी उसका साथ छोड़ना उचित नहीं समझा। आखिर घर का किराया तो मिल रहा था। वो टॉमस के बूते पर दो कमरों के उस सुविधा संपन्न टाइन हाउस में रह रही थी, लेकिन टॉमस चिड़चिड़ा होता जा रहा था। उसे एंजला की कमाई चाहिए थी और एंजला अपनी जुआ खेलने की आदत छोड़ नहीं सकती थी। किसी दिन कुछ कमा लाती तो चार दोस्तों को घर में ही जुटाकर पार्टी कर लेती। वह देर रात तक पीते, टहाते, लगाते और टॉमस का मजाक बनाते। साहित्य का उद्देश्य समाज की विसंगतियों, विषमताओं और कुरीतियों पर प्रहार करते हुए स्वस्थ समाज की स्थापना करना है। स्वस्थ मनोरंजन और यथार्थ चित्रण के साथ सामाजिक सरोकार साहित्य के केंद्र में आ गया है। सामाजिक सरोकार की सशक्त लेखिका डॉक्टर सुदर्शन प्रियदर्शिनी की लगभग एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह एवं उपन्यास है। काली हथेली कहानी संग्रह प्रवासी परिवेश पर आधारित है। परिवारों का टूटना विश्व की प्रमुख समस्या है। अमेरिका जैसे शिक्षित और विकसित देश में भी महिलाओं को अपने अधिकारों और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भारतीय लेखिका प्रभा केतान ने अपने अमेरिका प्रवास के अनुभवों का जिक्र करते हुए लिखा है कि कोई औरत मेकअप करने और पेंट पहन लेने से शक्तिशाली नहीं बन जाती। डॉक्टर सुदर्शन अपनी कहानी निशक में फिर दाम्पत्य जीवन के दरकने में पुरुष की उच्चंगल प्रवृत्ति को दोषी मानती है। सुनंदा अपने पति राजीव के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, परंतु राजीव इधर संबंधों के लिए लालायित रहता है। पुरुष की इस प्रवृत्ति को सुनंदा ने बड़े साहस के साथ बयान किया है। अपनी सारी ताकत बढ़ोते हुए बोली, राजीव देखो, आदिकाल से आज तक आदमी की फितरत में कोई अंदर नहीं माया, केवल सभ्यता का ओढ़न ओढ़कर लुक छिपकर सभ्यता के नए आवरण में और जंगलों और कबीलों से उठकर होटलों में आ गया है। परिवार की समरसता और मधुरता के लिए बच्चों का होना अनिवार्य है। बच्चे माता पिता के रिश्ते के मजबूत पुल की तरह होते हैं, क्योंकि बच्चों से माता पिता दोनों का जुड़ाव लगाव होता है। बच्चों की स्वस्थ परवरिश और परिवेश के लिए माता पिता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए बच्चों के होने से विघटन की प्रक्रिया रुकती है। तुम्हारी आयशा और दर्द कहानियों में परिवार के टूटने का एक कारण दम्ब

दादी के पास संतानों का न होना है। तुम्हारी आयशा की नायिका ने विवाह पूर्व ही तय कर लिया था कि वो 4-5 साल बच्चे नहीं पैदा करेगी। समय का लंबा अंतराल, विडंबना ये है कि माम बनने के पहले ही उसका तलाक हो जाता है। दर्द कहानी की एंजला जल्दी से जल्दी माम बनना चाहती है। यदि भी उसका कारण ममत्व नहीं बल्कि बच्चे और माम को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का उपभोग करना है, किंतु एंजला माम बनने इससे पहले ही उसका विकलांग और चालाक पति थॉमस उसे छोड़कर चला जाता है। अमेरिका के वर्जीनिया में रहने वाले कथाकार उमेश अग्निहोत्री ने अपनी कहानी पिज्जा में एक कुशल प्रवासी भारतीय परिवार का चित्रण किया है। आधुनिक बच्चे की समस्याओं और बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी पज्जा वैश्विक चिंता को प्रकट करती है कि अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए माता पिता का सजग, समझदार और धैर्यवान होना आवश्यक है। उन्हें बच्चों की रुचि और उनके क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना होगा। आज बच्चे ज्यादा बुद्धिमान, कुशल और चतुर हो गए हैं, जो अपनी उम्र से अधिक परिपक्व हो गए हैं। वे अपने माता पिता को अच्छी तरह समझते हैं, उनसे अपनी बात मनवाना जानते हैं। लेकिन माता पिता बच्चों का रुचियों और इच्छाओं को समझने में असमर्थ हैं। उनकी असमर्थता बच्चों की प्रतिभा को कुंडित कर देता है। कहानी की नेहा के लिए लेखक का कथन है, अपनी 9 साल की उम्र में उसने इतना जरूर जान लिया था कि माम बाप से कैसे काम निकाला जाता है। वह खेल में मेरी रुचि जगाने की कोशिश करने लगी, बीच बीच में बोलती, पापा आप खोलेगा, और जवाब देता, तू ही खेल। आजकल के बच्चे वीडियो गेम, मोबाइल फोन और फेसबुक पर ज्यादा व्यस्त रहते हैं। खेलकूद और व्यायाम से उनका नादा टूट सा गया है। लिव इन रिलेशनशिप, विवाहेतर संबंध तथा अवैध शारीरिक संबंधों के कारण अनाथ बच्चे सरकार के अनचाहे दायित्व बन गए हैं। उषा राजे सक्सेना ने अपनी कहानी 3 तिलंगे में ऐसे अनाथ बच्चों की समस्या को अभिव्यक्ति दिया है। कभी कभी दायित्व बोधहीन और संवेदन शून्य माँ बाप के जिंदा रहते हुए भी बच्चों को होम में जाना पड़ता है, जैसा कि कहानी में न्यायजल बताता है। डॉक्टर रजनी गुप्ता लिखती है कि हम भारत में रहकर विदेश के प्रति रंगीन सपनों का ताना बाना बुनते हैं, परंतु वहाँ संबंधों की क्षणिकता से उत्पन्न बिकरी जिंदगियों की चित्र जब सामने आते हैं तो इसके दर्द से प्रवासी करा उठता है। विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित यह कथा साहित्य जहाँ स्वदेश मोह जागृत करता है, तो वही विदेश में महसूस किए गए परायेपन की अनुभूतियों के तमाम चित्र पूरी बारीकी और निर्फीकता से खुलते जाते हैं। प्रवासी साहित्य के अंदर कहानीकार पूरी ईमानदारी से सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का चित्रण करते हुए समाज की दशा व दिशा को सुधारने का अथक प्रयास कर रहे हैं और मानवीय संवेदनाओं से रूबरू होकर उन्हें बखूबी महसूस कर रहे हैं। प्रवासी कहानियों का ट्रीटमेंट आम हिंदी कहानियों से बिल्कुल अलहदा है और बहुत हद तक आश्वस्त भी करता है कि ये कहानियां भारतीय मन को एक हद तक समझती है और उनके दर्द को, उनके हर्ष विषाद को नया वैश्विक विस्तार देती है। डॉक्टर प्रीत अरोड़ा का कहना है कि प्रवासी कहानियां मानवीय यथार्थ के भीतर मूल्यों की तलाश करती नजर आती है। भारतीय मानव मन अपनी मातृभूमि और रिश्तों से अलग होकर विदेशी परिवेश में एडजस्ट नहीं हो पाते, ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि भारत व विदेश की संस्कृति, सभ्यता व जीवन शैली में अत्यधिक अंतर है। वहाँ में एक आकर्षण है, वहाँ की दुनिया कई बार स्वप्निल संसार भी रचती है। तेजेंद्र शर्मा ने अपनी कहानी अभिशब्द के माध्यम से एक प्रवासी भारतीय के उपेक्षित जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है, जो अपना सर्वस्व त्याग कर द्वंद्वात्मक स्थिति को झेलता है। नायक रजनीकांत का भारत से लंदन जाना और वहाँ की संस्कृति व परिवेश में स्वयं को मिसफिट पाना उसके जीवन का कड़ू सत्य बन जाता है। इला प्रसाद की कहानी उस स्त्री का नाम में माम की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अमेरिका में बेटे का बड़ा बंगला होने के बावजूद वह ओल्ड होम्स के एक कमरे में रहती है, बीमारी की अवस्था में अकेला जूझती है, दूसरों से लिफ्ट लेती है,

0: उसके पास न तो उसकी तकलीफ पूछने वाला कोई है और न ही कोई बात करने वाला। जो भी उससे मिलता है वह उससे पहचान बढ़ाना चाहती है, उसे सुख दुख बांटती रहती है। अकेलेपन की शिकार वह किटकी से पड़ोसियों की गतिविधि देखती रहती है और चाहती है कि फोन पर लोग उससे बात करें। स्वयं की असहनीय तकलीफों के बावजूद वह अपने बेटे और बेटी के लिए जी रही है।
1: अभी आप अंजना एस की वार्ता सुन रहे थे, प्रवासी हिंदी कहानियों में सामाजिक जीवन। इसी के साथ आज का हिंदी प्रसारण यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: നമസ്കാർ, ആകാശവാണി സേ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത്ത് മേ വിശാൽ ശർമ്മ. मुख्य समाचार. भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई. ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया. भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा. अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई. फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा. और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया. अब समाचार विस्तार से. भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई.
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं. हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में उस पर आधारित है. और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई. प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है.
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है. स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है. इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं.
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है. उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए.
2: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं. ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है. हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए. हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है.
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी,

0: अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और यह समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पोल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती।

0: दिखती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
1: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित